0: हाम्रो मोबाइल पसल दुलेगौडामा
1: रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत मोबाइल अनलकको व्यवस्था
0: नझुक्किनुहोस् मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा Samsung, Redmi, Poco, MI, Vivo, Realme, Oppo, Benko ब्रांड का मोबाइल भ्याटविल को साथ फुल वारेन्टी
2: साथ ही 0% ब्याज दर में सब कंपनी का मोबाइल किस्ताबंदी में पाइन
0: प्रोपाइटर संतोष श्रेष्ठ हाम्रो मोबाइल पसल शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा कृति फोटो स्टूडियो को नजिक सांग्रीला बैंक को ठीक पारिपट्टी संपर्क 98560 56996
3: ए गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नाश वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो

0: उठा माजा किंग, ओ माजे किंग।
1: पर बात तो वही रहेगी ना कि मैं उसे जाने दूं या बस थोड़ा सा और इंतजार।

वो जाना चाहता है और वो चला जाएगा, पर बात तो वही रहेगी ना कि मैं उसे जाने दूं या बस थोड़ा सा और इंतजार।

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु। ला
0: किन्देऊ ला।